0: विमानन नाइट्स एंड आरटीबी 3.0 से चमकेगा आपका इलाका। आरटीबी क्षेत्र में अब सिर्फ काम करने का हब नहीं बल्कि एक बेहद जीवंत और आधुनिक शहर बनने जा रहा है। नए आरटीबी 3.0 मास्टर प्लान के तहत 7000 एकड़ के क्षेत्र में खूबसूरत पार्क, पैदल चलने योग्य रास्ते और एक रिहायशी अपार्टमेंट जो है वो बनने जा रहे हैं, जो कि काफी बेहतरीन रहने वाला है। फन के साथ वर्क आप यहाँ पे कर सकते हैं एंड जो कि करना चाहिए, जहाँ पे वर्क प्लेस हो, वहाँ पे फन रहे और सारी चीजें पास ही पास में रहे, तो वर्क करने का मजा ही कुछ और आता है। ये बात अलग है कि बॉस आपको काम कम नहीं देने वाले, काम बढ़ेगा शायद, इसकी गारंटी तो मैं नहीं ले सकता हूँ, लेकिन ये बात तो जरूर है कि यहाँ पे आप इसके इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है आनंद ले सकते हैं। बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, सुनाने जा रहा हूँ आपको अगला गाना, रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।
1: हरमीत, तुझे देख के पता है क्या लगता था कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा, कितना पोटेंशियल है तुझ में, क्या हो गया है, कुछ बन क्यों नहीं पाया तू?

0: होगा कि मेरे पास का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

का खाने पीने के शौकीनों के लिए बड़ी अच्छी खबर लेके आया हूँ कि खाने पीने के शौकीनों के लिए मज़ेदार खबर है। मशहूर शेफ क्रिस पेट्रो के नए आ रहे एब्सेकल बारबेक्यू स्टेक हाउस प्राइम एस्टिक्यू जो आरटीपी के हब में खुल रहा है, एंड कैरोलिना हैरिकेन्स के स्टार खिलाड़ी जैकब्स लेविन ने एक पार्टनर के रूप में निवेश किया है। ये रेस्टोरेंट जो है एक क्षेत्र का आकर्षण बनने वाला है, मतलब खाने के लिए, उसके बाद एम्बियंस के लिए ये रेस्टोरेंट हर चीज़ में काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जहाँ आप जाते ही आपको अच्छा एम्बियंस तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में बहुत अच्छा खाना भी मिलेगा। अच्छा खाना अगर पेट से उतर जाए तो क्या ही मज़ा है, मतलब ऐसा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। अच्छा खाना तो सबका फेवरेट होता ही है और बहुत सारे लोग फूडी है तो एक्सप्लोर करते रहते हैं। एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। आप सुन रहे हैं रेडियो द्वारा परिमल 96.6।

एंजॉय किया आपने। गाना आप सुन रहे रेडियो नारायण पुनर्वदन नाइट्स एंड रैली के पर्यावरण और प्रकृति प्रेमियों के लिए आज बहुत अच्छा दिन है। रैली के मशहूर कैपिटल एरिया ग्रीनवे सिस्टम ने 50 साल पूरे कर लिए हैं और आज शाम 5 बजे से सिटी ऑफ रैली म्यूजियम में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें रैली के खूबसूरत वॉकिंग और साइकिलिंग रास्तों के शानदार इतिहास और भविष्य के विकास को लेकर एक प्रदर्शनी जो है वो लगाई गई है। मतलब मैं यही कहता हूँ कि हमेशा नेचर की केयर करो। अगर आप नेचर की केयर करते हो तो नेचर डेफिनेटली आपकी केयर करता है और जो भी होता है वो नेचर की बदौलत होता है, इसलिए नेचर को हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए। देख रहे हो इस साल कितनी गर्मी थी, पेड़ लगाओ एंड लगाने के बाद उन्हें बड़ा करो, तो यही हर कंट्री का भविष्य जो है वो तय करने वाला है। एंड आप सुन रहे रेडियो नारा पर निर्वाणा नाइट्स, रेडियो नारा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: अच्छा सुनो, यू आर कमिंग फॉर तानिष्क रैले ट्रंक शो ना?
1: कब?
0: अरे आई टोल्ड यू लास्ट वीक, इट्स ऑन अक्टूबर 17th एंड 18th एट कोर्टयार्ड बाय मैरियट रैले कैरी, 1008 पार्क साइड मेन स्ट्रीट, कैरी नॉर्थ कैरोलाइना 27519, फ्रॉम 11 AM टू 7:30 PM. We had planned to get dinner also after.
1: Oh, I've already scheduled a flight meeting on the 17th.
0: Theek hai, Sunday then. What better way to spend the weekend than shopping for diamonds?

आपने एंजॉय किया ही गाना, गाना था वाकई में काफ़ी बेहतरीन। और दरम में लेटेंस और लैटिन्स रन क्लब की आज शाम दौड़ कम्युनिटी फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए आज शाम 6:30 बजे से दरम डाउनटाउन में द ग्लास जग बियर लैब ने एक रनिंग इवेंट शुरू किया है डाउनटाउन दरम द्वारा आयोजित। इस दौड़ में हर उम्र और हर रफ्तार के लोग शामिल हो रहे हैं जो सेहत और सामाजिक मेलजोल को बढ़ावा देने के लिए बेहतरीन पहल है। मेरा तो यही कहना है कि हेल्थ अच्छी रहती है तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती है। हेल्थ का अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है और धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि वेट ट्रेनिंग के साथ कार्डियो कितना ज़रूरी है। कार्डियो बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरी है, भागना चाहिए हर चीज़ के पीछे, चाहे वो पैसे हो चाहे सेहत हो, भागते रहो और जागते रहो, यही लाइक हैप्पीनेस आपको। उसके लिए फिटनेस रहना बहुत ज़रूरी है और फिट रहना ही चाहिए ताकि काम करने में मज़ा आए। आप सुन रहे रेडियो नारा पंडित नाइट्स रेडियो नारा पक्का।

नाइट एंड कम्युनिटी फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि मैंने कहा कि डाउनटाउन धरम में आयोजित इस दौड़ में हर उम्र और रफ्तार के लोग शामिल हो रहे हैं। आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं और शामिल होना चाहिए, क्योंकि रन करना चाहिए यार, हर चीज को रन करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ क्योंकि इट्स लाइक आपकी हेल्थ अगर अच्छी होगी तो कहते हैं ना, सर सलामत तो पगड़ी 50। आप ये कर सकते हैं, तो डेफिनेटली कार्डियो करना चाहिए धीरे धीरे वेट ट्रेनिंग के साथ। कार्डियो पे भी लोग शिफ्ट होते हुए मुझे अच्छा लग रहा है। कार्डियो इज द ओनली थिंग जो आपको फिट रखती है एंड वो करना ही चाहिए, और साथ में मेंटल हेल्थ अच्छी होना भी ज़रूरी है। आपको मेडिटेशन जो है वो हमेशा करते रहना चाहिए, फिजिकल वर्कआउट के साथ मेडिकल लाइक मेडिटेशन करना भी ज़रूरी है, ताकि आपकी मेंटल हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहे। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्भर नाइट्स, रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का लोकल।

आली आठ दृश्यम थ्री ची बारी आली। ये मूवी काफ़ी अच्छा चल रहा है, बजे रहिएगा रेडियो नायरा पर, सुनाने जा रहा हूँ आपको एक अच्छा गाना जो सेट कर देगा आपकी इस इवनिंग की वाइब। रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

ये गाना गाना था वाकई में काफ़ी बेहतरीन। आप सुन रहे रेडियो नायरापन निर्वधन नाइट्स, और मैं ये कह रहा था कि रामायण फिल्म से अरुण गोविल का राजा दशरथ का रुक जारी। 80 के दशक के मशहूर टीवी धारावाहिक में भगवान राम का जो किरदार निभाया था अरुण गोविल सर ने, अब बड़े पर्दे पर राजा दशरथ की भूमिका में नजर आए गए। नितेश तिवारी की आगामी मेगा बजट फिल्म रामायणा से उनका ये बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली फर्स्ट लुक पोस्टर जो है वो जारी कर रखा है। मतलब इतना सही ये सब स्टार कास्ट है और इतनी अच्छी तरह से VFX रामायण में किए गए हैं कि बस अब ऑडियंस को तो इंतज़ार नहीं हो रहा है, ऑडियंस बेसब्री से इंतज़ार कर रही है रामायण का रिलीज होने का। तो आप सुन रहे हैं रेडियो नायरापन निर्वधन नाइट्स, सुनाने जा रहा हूँ आपको अगला गाना, बने रहेगा रेडियो नायरापन, रेडियो नायरापन का देसी पक्का लोकल।

आपने एंजॉय किया ही गाना है। जिस तरह से दृश्यम 3 के लिए भीड़ उमड़ रही है वो काबिले तारीफ है। कहा जा रहा है कि अजय देवगन ने इस तरह से एक्टिंग की है एंड इसके बाद जो थ्रिलर इस मूवी का है दृश्यम 1 और 2 से और भी अच्छे लेवल का बनाया गया है, जो कि वाकई में काबिले तारीफ है। एंड यू नो लाइक यार, दृश्यम सीरीज का फैन लाइक विजय सालगांवकर, उनका थिएटर ओपन करना एंड उनका पहले एक छोटा केबल नेटवर्क हुआ करता था, उसके बाद मल्टीप्लेक्स बनाते हैं, उसके बाद क्या होने वाला है, मतलब क्यों ये केस रीओपन हुआ और कैसे सब कुछ हुआ, डेफिनेटली आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। मुझे भी ये फिल्म देखनी है और जैसे मैं फिल्म देखूंगा तो जेन्युइन रिव्यू जो है वो मेरे डेफिनेटली डालने वाला हूँ। तो फिलहाल कैसे चल रही है आपकी आज की ये शाम, एंड यू नो मौसम तो अच्छा खासा बन रहा है, धीरे धीरे ठंडी भी अच्छी हो रही है एंड गरबा का भी सीजन आने वाला है। तो आर यू रेडी टू प्ले दांडिया?

समझ में आ रहा है कि ख्याली पुलाव ना लाते हुए, ख्याली पुलाव ना बनाते हुए कुछ ना कुछ करना ज़रूर हो गया है, लाइक कुछ ना कुछ नया करना ज़रूरी हो गया है। आई मीन टू से कि कुछ ना कुछ बिजनेस करना है, कुछ ना कुछ यू नो लाइक शुरू करना है, तो शुरू करना है तो करना है, बस ये होगा वो होगा अब नहीं करेंगे बाद में करेंगे ये एक्सक्यूजेस देना जो है वो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे एक एक साल ऐसे ही जा रहा है। यू नो 2026 कितने जल्दी ख़त्म हुआ है कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन जो भी गोल्स थे आपके, क्या आपने अचीव करे, आपको जिम लगाना था, आपको कुछ नया सीखना था, कुछ इंस्ट्रूमेंट आपको प्ले करना था, किया आपने, नहीं ना। लेकिन हर चीज़ को हमेशा ऐसा डिले करके नहीं होगा, कभी ना कभी तो वो चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा, पंडित नाइट्स रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

एंजॉय किया आपने गाना गाना था वाकई में काफी बेहतरीन। आप सुन रहे रेडियो नारायण निर्वाणा नाइट्स, और मैं यही कह रहा था कि अप्लाई करो यार, मतलब अप्लाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप अगर अप्लाई करोगे तो ही वो चीजें होगी और बाद में देखा ही जाएगा यार, है ना। लेकिन पहले से ही अनुमान लगाना कि ऐसा होगा तो वैसा होगा ज़्यादा नहीं करना, बस जस्ट कुछ ना कुछ नया करना है। एक इंस्ट्रूमेंट ही सीख लो, उससे बहुत अच्छा रहता है। मेडिटेशन कर लो, थोड़ा 10,000 steps चलो, एंड ये चीज़ें करना बहुत मैंडेटरी है। आप हमारे रेडियो नायरा के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं एप्पल प्ले स्टोर से एंड गूगल प्ले स्टोर से। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली टाइप करना है रेडियो नायरा, आपको मिल जाएगा ऐप। उसके बाद आप हमारे आरजेस के अनलिमिटेड शोज म्यूज़िक एंजॉय कर सकते हैं, एंड बस शर्त यह है कि आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। तो आज ही जाइए और रेडियो नायरा का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्माण नाइट्स, रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का लोकल।

रेडियो सिटी पर सुनिए द हम्मा सॉन्ग, संग बाय जुबिन नौटियाल, शाशा तिरुपति, कंपोज्ड बाय ए आर रहमान, रिक्रिएटेड बाय बादशाह एंड तनिष्क, एंड रिटन बाय महबूब।

0: सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम एसडी 4 1490 एएम पक्का देसी पक्का लोकल।
1: अंश अंश जल्दी आ, क्या हुआ? अरे जल्दी आना, ये देख ये तेरा एक्स है ना, इसका नया वीडियो आया है।

साल नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

0: पीजिए सरकार।
1: कहने था कि मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया। नजरों से देखा।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: भोले बम भोले, भोले बम भोले।
1: रेडियो नायरा पर आप सुन रहे हैं गीतांजलि।

ओके सो गुड मॉर्निंग जानेमन, आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पे और आवाज है अमृता की. ऑफ कोर्स राइट नाउ आई एम इन माय स्टूडियो होल्डिंग दिस टम्बलर जिसमें है अल्कलाइन वाटर. जी हाँ, अल्कलाइन वाटर जिसकी सुबह सुबह मुझे लगता है सबको जरूरत होती है, लेकिन लोग क्योंकि इसमें मेहनत पड़ती है करना नहीं चाहते. आप लोग आलसी तो है, ये बात तो मानना पड़ेगा, बट योर गट नीड्स अ थेरेपी टू जस्ट लाइक यू गाइस. आपकी थेरेपी के लिए तो मैं हूँ, लेकिन आपके गट के थेरेपी के लिए अल्कलाइन वाटर जरूर होना चाहिए. अब आप अगर यू नो थोड़ा सा क्लासी दिखना चाहते हैं तो अपने अल्कलाइन वाटर को टम्बलर में डाल करके यू नो यू कैन प्रिटेंड दैट यू आर ड्रिंकिंग सम काइंड ऑफ प्रोटीन यू नो सुबह सुबह जिम के बाद, बट ये खाली स्टाइल के लिए. लेट मी टेल यू वन थिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ अल्कलाइन वाटर एंड दैट इज आपके गट को ये इतना अच्छा कर देता है ना कि आपके बॉडी में बीमारियाँ पैदा होने वाले जितने जर्म्स होते हैं वो आने ही नहीं देता है. एंड योर स्किन एक्चुअली स्टार्ट्स टू ग्लो और ये एक वन ऑफ द बेस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है जो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर सुनना चाहिए. कम से कम आप यही सुन करके अल्कलाइन वाटर पीना स्टार्ट कर दें. सो गाइस, अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, दिस इज योर साइन टू स्टार्ट दिस राइट नाउ. एंड ऑन दैट नोट चलिए सुनते हैं ये आने वाला गाना. सुबह सुबह के टाइम है तो मूड फ्रेश के लिए यू नो थोड़ी सी वाइबिंग सॉन्ग्स तो चलते हैं, तो वही सुनते हैं. उसके बाद मैं आपको बताती हूँ बॉलीवुड गॉसिप्स के बारे में.

नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: अच्छा सुनो, यू कमिंग फॉर तनिष्क रैले ट्रंक शो ना?
2: कब?
1: अरे आई टोल्ड यू लास्ट वीक, इट्स ऑन अक्टूबर 17th एंड 18th एट कोर्टयार्ड बाय मैरियट रैले कैरी, 1008 पार्क साइड मेन स्ट्रीट, कैरी, नॉर्थ कैरोलिना 27519, फ्रॉम 11 AM टू 7:30 PM. We had planned to get dinner also after.
2: Oh, I've already scheduled a flight meeting on the 17th.
1: ठीक है, Sunday then. What better way to spend the weekend than shopping for diamonds?
3: आप सुन रहे हैं ना? Tata product. 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM. पक्का देसी, पक्का लोकल.

वेलकम बैक टू रेडियो नायरा एंड यू आर लिसनिंग टू योर होस्ट अमृता. और मैं बताऊं, बेबो की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि बहुत टाइम से वो हमें किसी स्क्रीन पे नहीं दिखी है, लेकिन राइट नाउ वर्ल्ड इज गोइंग अराउंड दैट करीना कपूर खान इज सेट टू जॉइन शाहरुख खान अपकमिंग फिल्म किंग फॉर अ स्पेशल हाई एनर्जी डांस नंबर. एंड दैट इज समथिंग यू नीड टू नो कि आपकी फेवरेट करीना कपूर, जी हाँ करीना कपूर, वो आने वाली एक आइटम नंबर सॉन्ग में बिसाइड शाहरुख खान, जी हाँ उनकी अपकमिंग फिल्म किंग में. और ये तो काफी देखने वाली बात होगी यार कि अगेन फेविकॉल के बाद बेबो के बाद क्या धमाल मचाती हैं. लाइक आई एक्चुअली लव हर, है ना, उनके सारे आइटम सॉन्ग काफी अच्छे लगते हैं मुझे, और आइटम होना हो वही काफी अच्छी लगती हैं यार. इफ यू आर ऑल्सो दैट वन डाई हार्ट फैन ऑफ करीना कपूर तो वाई डोंट यू हिट मी अप. और आप मुझे बताइए उनके पिक्चर से सबसे फेवरेट गाना ऑन माई इंस्टाग्राम विच इज RJAMRITAA. टिल दैट चलिए हम ये सुनते आने वाला गाना, मिलती हूँ आपको ऑन द अदर साइड.

0: Radio Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka Desi, Pakka Local.
1: Have you ever wondered that things could have been different, but that doesn't mean that they would have been, you know, better? That is something we need to actually think about. Radio Naira पे आप आवाज़ सुन रहे हैं अमृता की, and you know ये एक ऐसी बात है जो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए. जरा देखूं दो कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में. जैसे कई बार अपनी लाइफ में ना कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ख़राब होती हैं, और मतलब जिसे हम चाहते हैं कि यार ये अलग तरीके से होनी चाहिए थी या फिर डिफरेंट तरीके से बाहर आनी चाहिए थी, चाहे कोई भी बात हो. तो वो अच्छी भी हो सकती थी और बुरी भी. अब आपने कभी ये सोचा है कि जो आपके साथ बुरा हुआ है क्या पता वो अच्छा होता तो, या फिर कि जो अच्छा हुआ था या फिर जिस चीज़ को आप कोसते हैं वो अगर किसी और तरीके से बहुत वर्स तरीके से बाहर आती तो. हैव यू एवर वंडर्ड? अगर आपके पास ऐसी कोई स्टोरी है तो मुझे ज़रूर बता सकते हैं आप ऑन माई इंस्टाग्राम विच इज़ RJAMRITAA. टिल दैट चलिए सुनते हैं आने वाला
2: गाना.
3: लाल गुदड़ी का लाल गुदड़ी का लाल.

0: ये तो बताओ जाना किधर है।
1: सुन मायने के सीधा जाके दाएं गुरु दाएं के सीधा जाके दाएं मायने के सीधा जाके दाएं गुरु दाएं के सीधा जाके दाएं फिर थोड़ा आगे मायने के दाएं के सीधा जाके दाएं के दाएं
0: हैं कुछ समझ में नहीं आया।
1: फिर से सुन मायने के सीधा जाके दाएं गुरु दाएं के सीधा जाके दाएं फिर थोड़ा आगे मायने के दाएं के सीधा जाके दाएं के दाएं के मायने के दाएं
0: घूम के वापस उधर ही आ गए।

You're listening to Radio Nara and this is your host Amrita. Gaane ke baad aapke bahut bahut swagat hai yahan par. And let's talk about the horoscopes, which is Radio Nara Horoscopes Rapid Fire. Aur baari hai Aries ki, yani mesh rashi walon ki. Aap logon ke liye aaj ka vibe jo hai na, wo kaafi zyada clear thinking and boundaries banane wala hai. And mesh rashi wale इमोशंस में बहकर कोई ऐसा फैसला मत लीजिए कि आप थोड़ा सा मुश्किल में पड़ जाए. फैक्ट्स पर जरूर ध्यान देना है और घर परिवार की जिम्मेदारियों को थोड़ी सी प्रायोरिटी भी देनी है. इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी चौरिस के बारे में, लेकिन आफ्टर दिस अपकमिंग ट्रैक. कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना.

Horoscopes Rapid Fire में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड यू आर लिसनिंग टू योर होस्ट अमृता ऑफ कोर्स. और आपको बताने वाली हूँ मैं वृषभ राशि यानी चौरस के बारे में. ऑल द चौरियंस जस्ट कम इन लाइन. आज की आपकी जो

वो फुल ऑन एनर्जी और नए एक्शंस के साथ होने वाली है एंड यू नो आज आपका जोश काफी हाई रहेगा। टीम वर्क और क्विक इंटरैक्शन से आप अपने गोल्स को जल्दी पा लेंगे। सो इफ यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग बिग तो आपको थोड़ा सा ग्रुप वर्क में भी काम करना पड़ेगा और टीम वर्क से आपको सपोर्ट ही मिलता है। तो आइंदा से आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कोई भी काम आप अकेले ना करें। सपोर्ट आपके दोस्तों का अगर रहेगा तो काम जल्दी भी होगा और अच्छे से भी। इसके साथ साथ अब बारी है मिथुन राशि यानी जेमिनाइज की। सो ऑल द जेमिनाइज जस्ट कम इन लाइन। मैं मिलती हूँ आपको आफ्टर दिस अपकमिंग ट्रैक।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: हाँ जी, तो स्वागत है आपका रेडियो नारा होरोस्कोप रैपिड फायर में, एंड दिस इज टाइम फॉर जेमिनाइज। थोड़ा पॉज लेने और पुरानी प्लानिंग रिव्यू करने का समय आ चुका है, क्योंकि सारे मिथुन राशि वाले चीजों को फोर्स बिल्कुल मत करिए, इसको छोड़ दीजिए, थोड़ा रिलैक्स करिए, अपने ही फाइनेंस और अकाउंट की प्लानिंग पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये टाइम है जिसमें आप प्लानिंग कर सकते हैं, और एग्जीक्यूट करने का जब टाइम आएगा तब भी मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन दिस टाइम आपको थोड़ा सा स्टडी करने की जरूरत है, हर चीजें देखने की जरूरत है, उसके बाद अपने डिसीजंस लेने की जरूरत है। सो इफ यू आर गोइंग टू टेक एनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस टुडे, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, प्लानिंग कर लेनी चाहिए, ताकि इसके प्रोज एंड कॉन्स आपको पता चल पाए, और इसके साथ ही आपको डिसीजन लेना चाहिए। एंड आफ्टर दिस मैं आपको बताने वाली हूँ कैंसेरियंस के बारे में, यानी ऑल द कर्क राशि वाले, तो प्लीज आप जरूर कहीं जाइएगा मत, और यहीं पर बने रहिएगा विद रेडियो नायरा, एंड आई एम गोइंग टू कैच यू ऑन द।

वेलकम बैक टू रेडियो नायरा होरोस्कोप रैपिड फायर एंड दिस इज योर होस्ट अमृता. अब चलिए बात करते हैं ऑल द कैंसेरियंस की, यानी कर्क राशि. सो फॉर टुडे आपके लिए बताऊं तो एक गुड न्यूज मिलने वाली है कर्क राशि वालों को. आपको मेहनत बिल्कुल करनी पड़ेगी उसकी चीज के लिए, एंड आपकी मेहनत की काफी तारीफें भी की जाएंगी, और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई जरूर रखिएगा. सक्सेस आपके पास आ रही है एंड दैट इज समथिंग यू नीड टू नो एंड रिमेम्बर कि सक्सेस आपके पास आ रही है. सो फटाफट से टाइट अप हो जाइए एंड गो फॉर इट. और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी लियोस के बारे में, यानी सिंह राशि. जस्ट गेट इन लाइन.

हाँ जी, तो स्वागत है आपका रेडियो नारा पे। और यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं होरोस्कोप्स की बात ही, और यहाँ पर अब बारी है लियोज यानी सिंह राशि की। सो आप लोगों के लिए मैं बताऊँ, लीडरशिप और ग्रैंड डिसीजन लेने का दिन है और काफी अच्छा दिन रहेगा ये। सिंह राशि वालों के लिए लीडर बनने का समय आ चुका है। ऑफिस हो या घर, आपके डिसीजंस काफी इम्पैक्ट डालेंगे। बस जिम्मेदारी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू डू एनीथिंग इम्पोर्टेंट टुडे, जस्ट गो फॉर इट। दिन काफी ज्यादा लकी है। एंड ऑफकोर्स आपको इस चीज पे थोड़ा ध्यान देना होगा कि आप डिसीजन क्या लेते हैं और किसके लिए। सो इसी के साथ अब बारी है कन्या राशि यानी वर्गोस की। बताऊंगी आपको लेकिन आफ्टर दिस सब कमिंग ट्रैक।

हाँ जी, तो स्वागत है आपका रेडियो नारा पे एंड वी आर डिस्कसिंग होरोस्कोप एंड नाउ इट्स टाइम फॉर वर्गोस। डिसिप्लिन और पुराने एक्सपीरियंस से सीखने का दिन है। कन्या राशि वालों के लिए शॉर्टकट मत ढूंढिए, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट नोट पर आप जरूर ध्यान रखिएगा। एंड स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम करेंगे तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और सक्सेस जरूर मिलेगी। वैसे मैं सच बताऊं तो वर्गोस के लिए ना ये काफी अच्छी बात है कि वो अपना काम जरूर करते हैं, पूरा दिल लगा के करते हैं, लेकिन वो ना थोड़ा सा शॉर्टकट ढूंढने का कोशिश करते हैं। बट इससे काम नहीं चलेगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए और सक्सेस चाहिए तो आपको थोड़ा सा प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। तो थोड़ा उन चीजों पे जरूर ध्यान रखिए। अब बताऊंगी आपको लीब्रास यानी तुला राशि के बारे में, तो सुनना मत भूलिएगा आफ्टर दिस अपकमिंग ट्रैक।

Welcome back to Radio Naira Horoscope Rapid Fire, and now it's time for all the Libras. Ji haan, Tula Rashi wale, just come in line, kyunki aapke sweet gestures aur dil ki baatein share karne ka din hai. Tula Rashi, कोई प्यारी सी बात या meaningful conversation आपके दिन को बना देगी. And अपने दिल की जरूर सुनिए और पॉजिटिव रहिए. ये आपके दिन के लिए काफी अच्छा नोट रहेगा. और मैं सच सच बताऊं, जब आप पॉजिटिव रहते हैं ना, तो आपकी सब चीजें वैसे ही बहुत अच्छी रहती है. और आप लोगों के लिए, चाहे वो तुला राशि के हो चाहे ना हो, मैं ये बात सबको बोल रही हूँ कि अपने दिन में ना पॉजिटिव रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है. इफ यू आर बीइंग पॉजिटिव, तो मुझे लगता है कि आप अपने दिन की शुरुआत भी अच्छी करते हैं और उसे एंड भी अच्छे से करते हैं. एंड ऑन दैट नोट, लेट्स टॉक अबाउट वृश्चिक राशि, विच इज स्कॉर्पियो. लेकिन आफ्टर दिस अपकमिंग ट्रैक, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना.

हां जी जानेमन, तो स्वागत है आपका रेडियो नैरो पे एंड दिस इज योर होस्ट अमृता एंड वी आर डिस्कसिंग होरोस्कोप्स एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ऑल द स्कॉर्पियोज यानी वृश्चिक राशि वाले। ओवरथिंकिंग से थोड़ा सा बचने की जरूरत है। ओह माय गॉड, ये तो मेरे लिए बातें कह रही है। सो वृश्चिक राशि, उन सभी चीजों के लिए परेशान मत होइए जो आपके कंट्रोल में नहीं है। थोड़ा सा रिलैक्स करिए एंड वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन रखिए, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर वर्क लाइफ एंड योर पर्सनल लाइफ टू ऑफ कोर्स, क्योंकि आप इन दोनों के बीच में अगर बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो एक चीज को जिसको आप तवज्जो दे रहे हैं वो तो हो जाएगी, लेकिन जो पीछे छूट जाता है उसको थोड़ा सा संभालना मुश्किल हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको ओवरथिंकिंग पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि आप उस पर ध्यान ना दें, ओवरथिंक ना करें। यू कैन डू मेडिटेशन या फिर आप बुक रीड कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, टू अवॉइड दीज थिंग्स। एंड इसके साथ साथ हम करेंगे काफी सारी बातें सैजिटेरियस यानी धनु राशि के भी बारे में।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: अच्छा सुनो, यू आर कमिंग फॉर तानिष्क रैले ट्रंक शो ना?
2: कब?
1: अरे आई टोल्ड यू लास्ट वीक, इट्स ऑन अक्टूबर 17th एंड 18th एट कोर्टयार्ड बाय मैरियट रैले कैरी, 1008 पार्क साइड मेन स्ट्रीट, कैरी, नॉर्थ कैरोलिना 27519, फ्रॉम 11 AM टू 7:30 PM. We had planned to get dinner also after.
2: Oh, I've already scheduled a flight meeting on the 17th.
1: ठीक है, Sunday then. What better way to spend the weekend than shopping for diamonds?
3: आप सुन रहे हैं Tata Product. 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM. पक्का देसी, पक्का लोकल.

Scoop Rapid Fire पे आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड दिस इज योर होस्ट अमृता एंड लेट्स टॉक अबाउट ऑल द सैजिटेरियस. जी हाँ, धनु राशि वाले, क्रिएटिविटी, नए आइडियाज और एक्साइटमेंट, दिस इज गोइंग टू बी अ वाइब फॉर योर डे. एंड धनु राशि के सितारे कह रहे हैं आप अपनी स्किल्स और क्रिएटिविटी को खुलकर यूज करेंगे आज, और नए रास्ते भी खुल रहे हैं. बस बड़े पिक्चर पर फोकस रखने की जरूरत है एंड इफ यू आर ड्रीमिंग बिग जस्ट गो फॉर इट. सो इसी के साथ अब मैं आपको बताऊंगी कैप्रिकॉर्न्स के भी बारे में, लेकिन आफ्टर दिस अपकमिंग ट्रैक कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना.

0: वेलकम बैक डार्लिंग ऑन रेडियो नायरा एंड दिस इज योर होस्ट अमृता. लेट्स टॉक अबाउट कैप्रिकॉर्न्स क्योंकि हम बात कर रहे थे होरोस्कोप्स की. एंड दिस टाइम फॉर कैप्रिकॉर्न्स फ्यूचर प्लानिंग और स्मार्ट मूव्स का दिन है. मकर राशि वालों के लिए आज का दिन फ्यूचर प्लानिंग के लिए काफी बेस्ट रहेगा. क्लाइंट्स के साथ डील करते वक्त आप अपने चार्म और समझदारी का भी यूज करेंगे, विच इज गोइंग टू बी सो बेनिफिशियल फॉर यू गाइज. सो इफ यू आर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू मीटिंग, जस्ट गो फॉर इट. आपका दिन काफी अच्छा रहेगा. कीप योर हेड अप एंड स्टैंडर्ड हाई. ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस उससे बहुत ज्यादा बूस्ट होता है. और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट राशि यानी एक्वेरियस के बारे में, लेकिन आफ्टर दिस अपकमिंग ट्रैक.
1: हरमीत, तुझे देख के पता है क्या लगता था? कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा. कितना पोटेंशियल है तुझ में. क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू?

0: कि मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

0: होता नहीं।
1: हाँ जी जानेमन, स्वागत है आपका रेडियो नारा होरोस्कोप रैपिड फायर में, एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एक्वेरियस। जी हाँ, कुंभ राशि वाले, कंसिस्टेंट एंड एफर्ट और हार्ड वर्क, ये सारी चीजें आपके दिन का वाइब है। कुंभ राशि, लगातार की गई मेहनत रंग जरूर लाएगी। अपने डेली रूटीन को स्ट्रीमलाइन कर लीजिए और प्रोडक्टिविटी थोड़ा सा हाई रखिए, क्योंकि आपकी ये जो कंसिस्टेंट एफर्ट है और हार्ड वर्क है, ये बहुत जल्द रंग लाने वाले हैं, व्हिच इज गोइंग टू बी सो गुड फॉर यू गाइस और आपकी करियर के लिए भी। और मुझे लगता है कि आपको इसके साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने दिन में कोई एक प्रोडक्टिव काम, ये मैं सिर्फ कुंभ राशि वालों को नहीं बोल रही हूँ, ये मैं आप सब लोगों को बोल रही हूँ, मेक योर डे अ लिटिल प्रोडक्टिव देन यस्टरडे। तो मुझे लगता है कि आपको काफी ज्यादा बदलाव भी नजर आएंगे, फिर चाहे वो एक्सरसाइज में हो, काम पे हो या घर पे हो, थोड़ा थोड़ा काम अपने दिन का जरूर बढ़ाइए और मुझे लगता है इसी के साथ आप अपने आप को बदलता हुआ भी देखेंगे। एंड ऑन दैट नोट, लेट्स टॉक अबाउट पाइसेस, लेकिन आफ्टर दिस।

साल नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

Radio Nara Horoscope Rapid Fire and this is your host Amrita. Let's talk about Meen Rashi, yani Zodiac Series ki aakhri Rashi, Pisces. खुशियों भरा दिन है और मूड भी काफी अपलिफ्ट रहेगा. मीन राशि, जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे कब से, वो अब आपके पास आ रही है. अपनी क्रिएटिव आइडियाज खुलकर सबके सामने रखिए और जिस भी चीज पे आप हाथ रखेंगे आज, वो जरूर कम्प्लीटली पूरा होगा और आप इससे बहुत ज्यादा खुश होने वाले. सो ऑल द पाइसेस जस्ट हेड अप और आप मुझे बताइए कि आज आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ. रात में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ऑन माय इंस्टाग्राम व्हिच इज RJAMRITAA. I'm going to catch you tomorrow on this show on this time. Of course, आप सुनना ना भूले. गपशप के साथ आपके दिन की शुरुआत कैसे होगी, ये सारी बातें बताती हूँ मैं. एंड इसी के साथ साथ अब वक्त हो गया है कि मैं यहाँ से जाऊँ. आपको बाय बाय कहके मन तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जाना पड़ेगा. मैं जाऊंगी नहीं तो अगला आएगा कैसे. Just stay tuned with Radio Nara.

Good morning. Hello. Hi. Namaste. I am back on 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu. Naira se main hu aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Trinilune Center. Well, good morning. Morning hai ji aur wahi apna purana routine shuru hai. Ghar se office, travel, work aur bhai kaam ka tension. But speaking not, aapke day ko relaxing banane ke liye main aapko Triangle ki special masaledar khabrein sunane wali hu. और ऑब्वियसली मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है. वैसे अभी तक ढेर सारी गपशप चल रही थी आपकी हमारे दोस्तों के साथ और नाउ मेरी बारी है आपको एंटरटेन करने की. सो गेट रेडी, मैं ढेर सारी इवेंट अपडेट आपको देने वाली हूँ और हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल होने वाली है सब कुछ आपको बताने वाली हूँ. इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मॉनिका के साथ रेडियो नायरा, पका देसी पका लोकल.

ये ब्यूटीफुल गाना आपने सुना ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी 4 फॉर 90 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा सेम है हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल रूल्स एंड टॉक। वेल हमारे ट्रायंगल में 38 नॉर्थ कैरोलिना डक अनलिमिटेड बैंड द बिलफिश टूर्नामेंट होने वाला है। कम एक्सपीरियंस वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड मीनिंगफुल इवेंट ऑन द क्रिस्टल कोस्ट द एमसीडीयू बिलफिश टूर्नामेंट। More than just a fishing competition, this tournament is a celebration of conservation, sport fishing excellence and coastal tradition that has made a lasting impact since inaugural year in 1989. This is must-see event as the combined high-level show of sport fishing and powerful conservation mission. Over the 3 years, the big tournament has helped find our billfish protecting effort, working alongside federal agencies to establish minimized size requirement for blue marlin and promoting ethical fish practices that are now standard across East Coast. मजा आने वाला है मिसमस के लिए, जरा एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

ये ब्यूटीफुल गाना आपने सुना ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी 4 49 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा सेम है हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल डूज एंड टॉक। विलियमर ट्रायंगल में बहुत जल्दी ग्लासी क्रीक एंड जेम मिनरल शो होने वाला है। एक्सप्लोर अ वाइब्रेंट वीक लॉन्ग आउटडोर शोकेसेस ऑफ जेम मिनरल फॉसिल ज्वेलरी एंड लैपिस सप्लाई एट द ग्रीसी क्रीक मिनरल एंड जेम शो इन स्प्रूस पाइन। With more than 60 vendors from around the world, this family-friendly event offers something for collectors and enthusiasts alike, from stunning gemstones to lavender jewels to unique specimens, hosted by Praver, Fire and Refuse to support local equipment purchase. The show features free admission and parking on site food and open to all ages. आने वाला है, मिस मत करिए, जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

Welcome here on 101.9 FM, 99.9 FM, HD4 for the 90 AM and 99.9 FM, HD3 for Telugu. Naira Seema, who are you? Apni Monica, and you are listening to Triangle Tunes and Talk. कहाँ धारा मैंने आपसे की entertainment की कोई कमी नहीं होगी. देखा बातों बातों में third hour में प्रवेश कर गया है और still हमारी बातें continue रहने वाली है. ढेर सारी मसालेदार खबरें ट्रायंगल की कुछ अपडेट्स मैं आपको बताने वाली हूँ. पर अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं, कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से शेयर करना चाहते हैं, या किसी लव्ड वन को आप बर्थडे विश करना चाहते हैं या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं ऑन 9192944800 पर और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर. फिलहाल और एक चाय का कप तैयार कर लीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा.

0: is the Multi Dal Gaadi Kebab. One more time, welcome here on 101.9 FM, 99.9 FM, LG4 for 90 AM and 99.9 FM, LG3 for Telugu. Naira se main hu aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Triangle Tools and Talk. ट्राइंगल में बहुत जल्दी विंडो वर्ल्ड 450 नॉट वीक 4 रो स्पीडवे सेलिब्रेट होने वाला है. डोंट मिस द विंडो वर्ल्ड 450 एट नॉट वीक 4 रो स्पीडवे. एक्सपीरियंस थ्रिलिंग नास्कर एक्शन लाइव. सी द रोर ऑफ इंजन एंड प्योर एक्साइटमेंट ऑफ हाई स्टेक रेसिंग. पॉइंट रेसिंग इज बैक एट नॉट वीक 4 रो. इट्स समर टाइम एंड स्पेक्टेकल्स एट वन ऑफ द नास्कर्स मोस्ट हिस्टोरिक ट्रैक. Don't miss epic tailgate and high-speed racing among the NASCAR's elite driving and team. The race is on. Multi-platinum country hitmaker is waiting for you. So, Lal Kahi Jaiye Gani, Sundariye Monica ke saath Radio Naira, Pakka Deshi, Pakka Local.
1: Ye kachimna chiva chivala, maza sajan jaga jhala ho, suriye ugavala. Ye kachimna chiva chivala, माझा साजण जा

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

ये धमाकेदार गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 49.9 AM एंड 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु। नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंग टून्स एंड ऑल। पर राले गेट रेडी फॉर स्पार्कलिंग ज्वेलरी एक्सपीरियंस। 17th और 18th अक्टूबर को आइए राले ट्रंक शो में एट कोर्टयार्ड बाय मैरियट राले कैरी। सुबह 11 बजे से शाम 7:30 बजे तक डिस्कवर कीजिए गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन और एंजॉय कीजिए मेकिंग चार्जेस पर 25% तक का ऑफ। तो इस स्पेशल अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए और 17th और 18th अक्टूबर ये डेट अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। अपनी पसंद की ज्वेलरी चुनिए और अपनी हर खुशी को बनाइए और भी स्पार्कलिंग। राले ट्रंक शो, जहाँ स्टाइल मिले स्पेशल सेविंग के साथ। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए।

ये अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4, 4090 AM एंड 99.9 FM HD3 for Telugu, दायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राई मिल्टन संटॉक। पता है बहुत थके आप सुबह सुबह ये वर्कलोड देखकर, बट डोंट वरी, आपको रिलैक्स फील करने के लिए ढेर सारी मस्ती कंटिन्यू रहने वाली है। वैसे आपने कुछ नोटिस किया क्या? नहीं ना, हम बातें और मस्ती करते करते सेकेंड आवर में प्रवेश कर चुके हैं और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। वेल, आपके साथ बातें और मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है, बट हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल हो रही है, कहाँ क्या होने वाला है, कौन से इवेंट होने वाले हैं, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ और ढेर सारे धमाकेदार गाने भी बजते रहने वाले हैं। इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

विशाल ददलानी एंड श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना ड्रामा क्वीन कंपोज्ड बाय विशाल शेखर एंड लिरिक्स बाय अमिताभ भट्टाचार्य एंड कुमार ओनली ऑन रेडियो सिटी।

0: Manara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
1: इस माहौल गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM एंड 99.9 FM, SD3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल सेंटर। वेल हमारे ट्रायंगल में एनुअल क्रिसमस इन जुलाई सेलिब्रेट होने वाला है। द फेस्टिवल किक्स ऑफ ऑन फ्राइडे विद द फुल लाइनअप ऑफ एंटरटेनर्स एंड फूड वेंडर्स मेकिंग डाउनटाउन वेस्ट जेफरसन एंड परफेक्ट स्पॉट टू स्पेंड द इवनिंग। Saturday bring art and craft, specialty food and local non-profit. The festival extends throughout the downtown area along the Jefferson A. With the sidewalk clear for walking and browsing the shop, Ash Country Art Council hosts children activity performance through the street showcasing their magical talent and Santa and Mrs. Claus arrive straight from the North Pole. मजा आने वाला है, मिस मत करिए, जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का लोकल।
2: गुदड़ी का लाल गुदड़ी का लाल गुदड़ी का लाल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 41490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: ये ब्यूटीफुल गाना आपने सुना ऑन 101.9 FM, 99.9 FM, HD4, 4090 AM एंड 99.9 FM, HD3 तेलुगु। नायरा फेम है, हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल डूज एंड टॉक। वेल, हमारे ट्रायंगल में 38 नॉर्थ कैरोलिना डक अनलिमिटेड बैंड द बिल फिश टूर्नामेंट होने वाला है। कम एक्सपीरियंस वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड मीनिंगफुल इवेंट ऑन द क्रिस्टल कोस्ट, द MCBU बिल फिश टूर्नामेंट। More than just a fishing competition, this tournament is celebration of conservation, sports fishing excellence and coastal tradition that has made a lasting impact since inaugural year in 1989. This is must-see event as the combined high-level show of sport fishing and powerful conservation mission. Over the 3 years, the big tournament has helped find our billfish protecting effort, working alongside federal agencies to establish minimized size requirement for blue marlin and promoting ethical fish practices that are now standard across East Coast. Baza aane wala hai, miss mat kariye, zara enjoy kariye, filhal ke jaiyega nahi, sunte rahiye Monica ke saath Radio 9.9 FM.

माहौल गाना था ना, एक नंबर, मुझे तो मजा आ गया, आपको भी अच्छा लगा ना। वेल 101.9 FM, 99.9 FM, HD4 for 90 AM, 99.9 FM, HD3 for Telugu, Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका, और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टून्स एंड टॉक। लगता है मैं अभी अभी तो आई थी और अभी कहाँ जाने का वक्त हो चला है, और फिकर नॉट, आपके एंटरटेनमेंट में और मस्ती में कोई कमी नहीं होने वाली, ये रेडियो नायरा का और मेरा पक्का पक्का आपसे वादा है। हमारे होस्ट और मैं आपको साथ में एंटरटेन करते रहने वाले हैं ऑन 101.9 FM, 99.9 FM, HD4 for 90 AM, 99.9 FM, HD3 for Telugu। रेडियो नायरा सुन रहे हैं आप, या आप प्ले स्टोर जाके हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं हमारे साथ। वेल कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी समय, ओनली ऑन ट्रायंगल ट्यून्स ऑन टॉप, पर ट्रायंगल की स्पेशल मसालेदार धमाकेदार खबरों के साथ। वेल अगला गाना स्पेशल आपके लिए बजने वाला है, कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: कि मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: डबलू हुई गुंड इंटरपोल से। जो सबसे गंदा फुगड़ी खेलेगा वही किलर होगा। आओ फुगड़ी डांस करें।
1: Oh bhai phu, phugadi phu, you like me and I like you too. Oh bhai phu, phugadi phu, you like me and I like you too. Oh bhai phu, phugadi phu, you like me.

0: रॉकेट गाये फुल जड़ी से तूने भरे ले पॉकेट। अरे बारा बन मेरे जाई सबन, ये ले नाना का बॉम्ब जाके उड़ा दे घर।
1: You like me and I like you too. Oh, bhai phu, phugadi phu. You like me.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोक।

एंड वेलकम बैक. या सो सबसे पहले तो शुरू करते हैं. एज आई मेंशनड, वी गोना टॉक अबाउट कैरेक्टर एक्टर्स. सो इमेजिन, हमारी हर फिल्म में कोई ना कोई हीरो होता है, हीरोइन होती है. पोस्टर्स पर भी उनकी तस्वीरें होती हैं, प्रमोशंस में उनके नाम होते हैं. यू विल फाइंड देम इन इंटरव्यूज एंड एवरीवेयर. हाउएवर, हैव यू एवर थॉट दैट इफ सम ऑफ आवर फेवरेट फिल्म्स उनकी मेमोरी में, जो उस मूवीज की हमारे जहन में जो मेमोरी है, देर आर सम कैरेक्टर एक्टर्स भी हैं जिनको अगर हम निकाल दें, कैन यू इमेजिन अ मूवी विदाउट दैम? आई गिव यू एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल,

Well, Hera Ferry. How about if we take out Babu Rao? How about three idiots में से वायरस निकाल दो? या फिर वो जो पुरानी मूवी थी शोले, उसका जेलर निकाल दो? How about DDLJ का वो स्ट्रिक्ट फादर? So कई बार हीरो का नाम याद आए ना आए, लेकिन कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर एक्टर्स के डायलॉग हमें 20 साल तक याद रह सकते हैं, और इसी वजह से कैरेक्टर एक्टर सिनेमा में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. उनका नाम सिर्फ हीरो की स्टोरी को सपोर्ट करना नहीं होता, वो फिल्म की दुनिया को बिलीवेबल बनाते हैं. और हीरो के आसपास फैमिली कौन है, ऑफिस का बॉस कौन है, फनी नेबर कौन है, विलन का असिस्टेंट कौन है, यू नो वो अनोइंग रिश्तेदार, ये सारे कैरेक्टर्स मिलकर फिल्म को लाइव लाइफ देते हैं, लाइव रखते हैं और लाइफ देते हैं. सो कैरेक्टर एक्टर के पास एक फ्रीडम भी होती है, यू नो किसी फिल्म में वो विलन बन जाते हैं, कभी कॉमेडियन बन जाते हैं, यू नो कभी स्ट्रिक्ट फादर और बेचारा आदमी और एनीथिंग. बेसिकली दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट बिकम अ हीरो इज़ माई पॉइंट. सो दे गेट दोज वेराइटी ऑफ रोल्स जो हमारी यादों में यादगार रह जाते हैं. सो आप मुझे बताना कि ऐसा कौन सा एक्टर है जो आपको किसी मूवी में यू नो उसका नाम लेते ही हीरो हीरोइन से ज़्यादा वो कैरेक्टर एक्टर आपके दिमाग में आता है उस मूवी का नाम लेके. जस्ट लेट मी नो हाउ यू फील, व्हाट यू थिंक अबाउट इट. अगेन द नंबर इज़ 919-999-8595. तो हम थोड़ी सी बातें भी कर सकते हैं. अनटिल देन आई वॉज गोना एक्चुअली टॉक अ लिटल बिट ऑल्सो अबाउट, लाइक वी टॉक्ड अबाउट बाबू राव. अगर बॉलीवुड कैरेक्टर एक्टर्स की लिस्ट बनाई जाए, परेश रावल का नाम बहुत ऊपर आएगा, राइट? सो आज की जनरेशन में सबसे ज़्यादा बाबू राव गणपत राव आपटे के नाम से जानती है. वो चश्मा, वो धोती कुर्ता, वो इरिटेटिंग एक्सप्रेशंस और वो यूनिक मराठी एक्सेंट, यू नो मराठी एक्सेंटेड हिंदी एक्सेंट. बाबू राव को ट्रेडिशनल कमेडियन तो नहीं था, लेकिन वो एक्चुअली एक फ्रस्ट्रेटेड लैंडलॉर्ड था ना, कि जिसके घर में दो अनएम्प्लॉयड लड़के रहते हैं, लेकिन परेश रावल ने उस फ्रस्ट्रेशन को कॉमेडी में कैसे कन्वर्ट कर दिया. इट वॉज लाइक अमेजिंग. आई कैन वॉच दिस हेरा फेरी फॉर जिलियन टाइम्स. एंड परहैप्स इसी वजह से उनका नाम इतना मेमोरेबल बना. वेल, आप लोगों को पता है या नहीं, बट मोस्ट ऑफ You who have attended the show of Anupam Kher ji last Friday, I believe, tha jaane pehchane anjaane, usme jo unka saath de rahi thi Swaroop Sampath ji, she is Paresh Rawal's wife. Wo bhi usi time pata chala tha. Sorry. Anyhow, it was great meeting with them as well. So that was an iconic role I wanted to say in. You know, Hera Feri for Babu Rao Apte. So let's continue listening to some songs and we'll come back and talk a little bit more. Here you go. You say-

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: अच्छा सुनो, यू आर कमिंग फॉर तानिष्क रैले ट्रंक शो ना?
2: कब?
1: अरे आई टोल्ड यू लास्ट वीक, इट्स ऑन अक्टूबर 17th एंड 18th एट कोर्टयार्ड बाय मैरियट रैले कैरी, 1008 पार्क साइड मेन स्ट्रीट, कैरी, नॉर्थ कैरोलिना 27519, फ्रॉम 11 AM टू 7:30 PM. We had planned to get dinner also after.
2: Oh, I've already scheduled a flight meeting on the 17th.
1: Theek hai, Sunday then. What better way to spend the weekend than shopping for diamonds? Tanishq, a Tata
3: Absolute
1: product.
3: Here, Radio Nara, 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 4090 AM. Pakka desi, pakka local.
4: पक्का देसी पक्का लोकल एंड मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट ज्योति एंड यू गाइस आर लिसनिंग टू रेडियो नारा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM. हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर एक्टर्स की एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट परेश रावल जी. सो इन कंटिन्यूशन टू दैट आई वुड से दैट ही वाज, इवन दो बाबूराव कैरेक्टर वॉज सुपर मेमोरेबल, बट स्टिल दैट वॉज जस्ट नॉट द ओनली थिंग ही डिड थ्रू आउट हिज लाइफ, राइट? हम उन्हें सिर्फ इस एक रोल से याद नहीं कर सकते, बिकॉज इफ यू एक्चुअली सी उन्होंने अपने करियर में कितने स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रोल्स किए हैं. एक वक्त था जब परेश रावल को स्क्रीन पर देख कर ऑडियंस एज्यूम करती थी कि ये विलन ही होंगे. And you know, slowly and gradually he got into Hera Pheri and उन्होंने अपनी एक इमेज बदल दी. एंड उसके बाद ही कंटिन्यूड विद आवारा पागल दीवाना, हंगामा, गरम मसाला, भागम भाग, वेलकम एंड आई डोंट नो इन न्यूमरस मूवीज ही डिड. एंड देन वी ऑल स्टार्टेड वेटिंग फॉर सम ऑफ द मूवीज लाइक दैट, राइट? एक डेकेड उन्होंने विलन के रूप में पूरा कन्विंस किया कि यस आई कैन बी द विलन. एंड देन नेक्स्ट ही चेंज्ड इंटायरली हिज पोस्चर, हिज कैरेक्टर, एंड ही बिकेम मोर लाइक कमेडियन. सो पहले एक टाइम था जब विलन थे तो डर लगता था सोचने में, जैसे पहले शक्ति कपूर, रंजीत वगैरह होते थे, वी यूज टू बी लाइक ए यू नो स्केयर्ड ऑफ दैट. And it was something similar. But now, abhi, because unki image aisi ban gayi hai because of all these movies recently that he did, to abhi itna dar nahi lagta, right? Interesting part unki is movie ka tha, if you remember that Akshay Kumar, I mean, it is just not specific scene, but it is more like in general. Like Akshay Kumar is saying something, Sunil Shetty is saying something, and camera is on Paresh Rawal, and he is like, just looking with those glasses, जो इतनी ज़्यादा number वाली glasses उन्होंने एक तो पहनी हैं, and he looks like so cute and at the same time so funny that oh my god, poor me, what are you talking about? You don't listen to me or what? So I have question for you guys that what do you guys think कि अगर बाबू राव नहीं होते उस movie में, क्या वो इतनी iconic होती? Even though we had our heroes Sunil Shetty and Akshay Kumar, what do you guys think? कॉल करके बताना. अंटिल देन लेट्स लिसन टू द नेक्स्ट नंबर एंड कमिंग अप राइट नाउ.

0: after the year. Radio Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM. Pakka Desi, Pakka Local.
1: Pakka Desi, Pakka Local. And main hoon local to North Carolina. It's that went really well. जलील दी में बोला था शायद इसलिए. एंड यू गाइस आर लिसनिंग टू मी एट 99.9 एफएम HD4 एंड 101.9 एफएम 1490 एएम एंड आई एम हियर. सो हमने बात करी प्रेश रावल जी की. अब नेक्स्ट मेरी लिस्ट में है खान. शाहरुख नहीं है इस बारी, इट इज़ कादर खान. सो कादर खान जी का नाम जब आता है वो सिर्फ कॉमेडी के लिए नहीं आता, ही इज़ एक्चुअली अ कंप्लीट सिनेमा पर्सनालिटी. वो स्क्रीन पर एक्टर, स्क्रीन के पीछे हिंदी सिनेमा को उन्होंने बहुत बहुत कंट्रीब्यूट किया इन टर्म्स ऑफ हिज डायलॉग राइटिंग. स्पेशली उनकी डायलॉग राइटिंग का अंदाज अपना ही था, स्पेशली 70s 80s को पकड़ लो, कहीं नहीं जाना बस पकड़ना है. कमर्शियल हिंदी फिल्म्स देख लीजिए, पावरफुल ड्रामेटिक डायलॉग्स, इमोशनल कन्फ्रंटेशन, कॉमेडी सीन्स, यू नो हिज कंट्रीब्यूशन वॉज रियली डीप. एंड द जनरेशन ऑफ 90s में जब यू नो आई, देन उसके लिए भी, उस जनरेशन के लिए भी कादर खान का नाम सुनते ही एक और नाम ऑटोमेटिकली याद आता है 90s में, बिकॉज वो एक डुओ बन गया था यू नो मूवीज के हिसाब से. एंड दैट वॉज गोविंदा. सो गोविंदा और कादर खान की केमिस्ट्री फैंटेस्टिक. कभी बाप बेटा, कभी ससुर दामाद, यू हैव रिमेंबर दोज मूवीज लाइक कुली नंबर वन, दूल्हे राजा, साजन कर चले, ससुराल, आंखें, यू नो नॉट ओनली दीज वर नॉट जस्ट द मूवीज, दे वर लाइक स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ बॉलीवुड कॉमेडी. एक एरा था 90s का कि कादर खान की कॉमेडी इंटरेस्टिंग थी. एंड इट वॉज नॉट जस्ट द फनी एक्सप्रेशंस पर डिपेंड नहीं करते थे, उनके स्ट्रेंथ थी लैंग्वेज एंड डायलॉग में रिदम, वर्ड्स का सिलेक्शन, एक लाइन को स्ट्रेच करके बोलना, फिर सडन पॉज और फिर पंच लाइन दे देना. लेकिन उनका इमोशनल साइड भी इक्वली पावरफुल था. इंटरेस्टिंग थे उनके डायलॉग्स बहुत ज़्यादा. लाइक देर इज़ नो कॉम्पिटिशन, देर इज़ नो बड़ी लाइक कादर खान जी एंड द वे ही कंट्रीब्यूटेड टू द यू नो हिंदी सिनेमा इन टर्म्स ऑफ हिज डायलॉग्स. ऑडियंस उनको कमेडियन के रूप में प्यार करती है और वहीं पर ऑडियंस उनकी इमोशनल सीन्स को भी रो रो के अप्रिशिएट करती है बिकॉज वो इतने ज़्यादा भावुक होते हैं. भावुक बहुत टाइम के बाद मैंने वर्ड यूज़ करा है. आज के यंगर लिसनर्स के लिए एक फन एक्सपेरिमेंट. सो कभी वीकेंड पे 90s की गोविंदा और कादर खान की मूवी ज़रूर लगाना. एनी कॉमेडी, जस्ट पिक अप एनीथिंग, कुली नंबर वन, एनीथिंग. एंड व्हेन यू डू दैट, तो वो जो डायलॉग्स हैं उस मूवी के और जहाँ पे थोड़े थोड़े कादर खानिश इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, आई वॉन्ट टू नेम इट, उनमें से आप मुझे बताना कि आपकी फेवरेट गोविंदा कादर खान डुओ कौन सी मूवी है. वेल इट वॉज अमेजिंग बिकॉज काफ़ी सॉन्ग्स थे यार, यू नो देर लॉट ऑफ सॉन्ग्स, बट आई जस्ट पिक्ड अप कपल ऑफ देम फॉर अस टू जस्ट लिसन टुडे. सो लेट्स कंटिन्यू लिसनिंग. थैंक यू सो मच कादर खान जी फॉर ऑल योर कंट्रीब्यूशंस एंड हियर यू गो गाइज़.

0: at Triangles Biryani in Morrisville. We are elevating the art of biryani with unmatched quality and flavor. From the finest hand-picked spices to the freshest vegetables and premium meats, every dish is a masterpiece. Don't miss our signature Kukur Pulav, a culinary delight available with chicken, goat, paneer, shrimp or fresh vegetables. It's fresh, flavorful and exclusive to the East Coast. Start your feast with sizzling appetizers, perfectly paired with your favorite hot drinks. Indulge in our weekday unlimited thali, a bountiful spread available in vegetarian and non-vegetarian options. Unwind with our signature cocktails like Pushpa the Fire, Classic Margarita, Old Fashioned, Negroni or Jungle Bird. Visit us today at 4121 Davis Drive, Morrisville or call 919-377-1029. Triangles Biryani. Fresh, flavorful, and
1: I'm sun rahe hai Radio Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM. Pakka desi, pakka local.
2: Hey guys, welcome back. मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट और आप सुन रहे हैं मुझे रेडियो नारा 99.9 FM HD4 and 101.9 FM 1490 AM. हम बात करें कैरेक्टर एक्ट्रेस की एंड नेक्स्ट इज द फीवर ऑफ जॉनी लीवर. अच्छा था ना, दैट वाज नाइस. सो 90s का बॉलीवुड इमेजिन कीजिए एंड फिर स्क्रीन पर हैं जॉनी लीवर. एंड कभी होटल मैनेजर, कभी सर्वेंट, कभी फ्रेंड, कभी स्ट्रेंज रिलेटिव, कभी पुलिस ऑफिसर. बहुत सारी मूवीज करी उन्होंने इन विद दीज नेसेस, यू नो दीज कैरेक्टर्स एक्चुअली बिकेम अ नेसेसिटी आफ्टर आफ्टर ही वाज इंसर्टेड इनटू सम ऑफ द इनिशियल कैरेक्टर्स. हिज कैरेक्टर बिकेम मोर लाइक अ नेसेसिटी कि नहीं, इनके बिना मूवी पूरी नहीं होगी. सो दैट इज यू नो मेजर एलिमेंट ऑफ द मूवी, विच इज़ वेरी रेयर कि एक कैरेक्टर एक्टर को भी मद्देनजर रखते हुए जब स्क्रिप्ट लिखी जाती है. सो दैट बिकम्स रियली इम्पॉर्टेंट. एंड ही हैज़ एक्सट्रीमली एक्सप्रेसिव फेस, लाइक यू नो आईज अलग रिएक्ट करती हैं, फेस कहीं और जा रहा है व्हेन इट कम्स टू कॉमेडी. सो दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट जॉनी जी. एंड आई एम गेसिंग दैट यू नो His kids, they have actually taken, at least the daughter has taken on him. So it's, she can do a lot of mimicry of different actors. So that is interesting. So Johnny ne bahut sari movies kari, Dulhe Raja, Ishq Love ke liye kuch bhi karega, Bazigar, you name it. And, you know, he has been playing different comedy roles based on different comedy setup. So that is quite memorable. I'm not gonna take a lot of time right now because we're gonna very soon reach the top of the hour. So I'm gonna let you guys listen to some of the songs from Johnny Lever's movies. So you guys enjoy and we will talk very, very, very soon. Hey!

0: Naira 101.9 FM, Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM, HD4 and 1490 AM. Pakka Desi.
1: 99.9 Naira mein kho jao, Pakka Desi.
2: हेलो हेलो एंड इट इज 6 o'clock. आपने पूरा एक घंटा मेरे साथ बिताया. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. इट वाज फन टॉकिंग टू यू गाइस. एनी हाउ, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट ज्योति और आप सुन रहे हैं मुझे 99.9 एफएम एचडी 4 101.9 एफएम 1490 एएम. चूंकि आपने मेरे साथ एक घंटा पूरा बिताया, अभी मैं आई एम गोना स्टार्ट दिस आवर टॉकिंग अबाउट समबडी दैट वी इंटरव्यूड. We as in Radio Naira last Friday. He is also one of the character actors. He started the movie when he was super, super young, in the age of probably 30s, I believe. He played a character of 60 years old, if you remember, if you know what I mean. Yeah, I also got a chance to meet with him last week, Tuesday. जब भी वो प्रोग्राम था, इट वॉज फन. एंड फिर उन्होंने अपना शो किया यहाँ पे, जाने पहचाने अनजाने. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मिस्टर अनुपम खेर जी की. इट वॉज एक्चुअली फन मीटिंग हिम. बहुत बहुत बहुत साल पहले उनको एक दोज हु बिलोंग टू दिल्ली, यू गाइज नो वेयर धौला कुआं इज. धौला कुआं में गुड़गांव रोड जाते समय, वो जो एक रोड है गुड़गांव की तरफ जो जाती है, वहाँ पे I was with a number of my colleagues. वहाँ पे एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से हमने देखा अनुपम खेर जी बैठे हुए हैं ऐसे वेव कर. I think interactive, obviously, because वो तो सिर्फ एक वेव था. But it was fun meeting him. He is a very, very, very sweet personality. Really liked him. But other than तारीफ करनी उनकी बंद करती हूँ थोड़ा सा इस मूवीज़ के हिसाब से तारीफ़ करती हूँ. बिकॉज एक चीज़ मुझे जो उनसे पूछनी थी और बोलना था कि एक बार, बस एक बार वो एक डायलॉग बोल दो. वो याद है मूवी कर्मा? कितने कैरेक्टर एक्टर्स के कैरेक्टर्स करे हैं अनुपम खेर जी ने, लाइक ससुर जी, फादर. द बेस्ट वॉज, आई मीन आई एम नॉट सेइंग दैट अदर्स वर नॉट द बेस्ट, बट डॉक्टर डैंग, बस वो एक डायलॉग था. ये थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने राना, ये थप्पड़ की गूंज अब तुम्हें सुनाई देगी. ओ माय गॉड, दैट वाज लाइक वाओ. इट वाज फन. सो सारांश से शुरू करके उन्होंने इतने सारे यू नो लाइटर शेड्स वाले रोल करे हैं, जैसे ऑब्वियसली वी नो ऑल DDLJ, कुछ कुछ होता है लम्हे, स्पेशल 26, दैट वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड. एक जनरेशन उन्होंने DDLJ के साथ करी, दूसरी KK HH, एंड फिर कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी करे. एंड देन ही हैड हिज ओन शो विच वॉज लाइक, अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है. सो दैट वॉज ऑल्सो वन ऑफ इट्स काइंड. सो आई थिंक ही डिड रियली ग्रेट ऑन दैट. कभी अंकल, कभी प्रिंसिपल, कभी पड़ोसी एंड कभी मिस्टर मल्होत्रा. सो इट वॉज फन. इट वॉज रियली फन मीटिंग हिम. आई एम जस्ट गेटिंग नॉस्टैल्जिक हियर. लेट्स जस्ट लिसन टू सम ऑफ हिज सॉन्ग्स एंड विल कम बैक एंड टॉक अबाउट समबडी एल्स. बट इट वॉज रियली फन मीटिंग हिम. एंड I just fell sick for some reason, and like I was telling you guys, allergies. Otherwise I would have been definitely there, because he was like, obviously sorry about that nasal thing, but he was inviting us everyone and it would have been really great to see him perform. All right, baatein kam gaane zyada, let's get back.

0: सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
1: The Ashley Sanchez Show is on, and the North Carolina Courage are making their push for the playoffs. With only 2 regular season home games left, every match matters, and every moment could be historic. Don't wait for the highlights. Don't watch from the couch. Be there to experience it live. Tickets are selling fast. Get yours before they're gone at tickets.nccourage.com.
2: क्या हर हफ्ते ग्रोसरी का बिल देख के शॉक लगता है? गैस और डीजल प्राइसेस से दिमाग गर्म हो रहा है? हेल्थ इंश्योरेंस कितना महंगा हो गया है? और मेडिकेयर, मेडिकेड, सोशल सिक्योरिटी को काटने का प्लान है? हम आम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि अमीर और भी अमीर होते जा रहे हैं। इसको सिर्फ एक चीज बदल सकता है, आपका वोट। आपके फ्यूचर में आपकी आवाज है आपका वोट। इस नवंबर जरूर वोट करें।
3: Paid for by Citizen Desi, a non-profit organization. Learn more at
0: citizendesi.com. आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
4: वेलकम बैक गाइस, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट ज्योति, एंड आप सुन रहे हैं मुझे रेडियो नायरा 99.9 FM, HD4 एंड 101.9 FM, 1490 AM। बात करते हैं कैरेक्टर एक्टर्स की, तो हम भूल नहीं सकते एक कैरेक्टर, आई डोंट नो हाउ टू से दिस टू इंट्रोड्यूस हिज इवन कैरेक्टर हियर। कुछ एक्टर्स को सीन एस्टैब्लिश करने के लिए ना 5 मिनट का मोनोलॉग चाहिए बस, एंड दैट 5 मिनट्स आर इनफ फॉर द इंटायर मूवी। राजपाल यादव, जो कभी कभी सिर्फ कैमरा उनके फेस पर कट कर दे और ऑडियंस ऑलरेडी लाफ कर रही होती है, कैसे बोला ना मैंने, लाफ कर रही होती, हंस रही होती है। उनकी सबसे पावरफुल क्वालिटी है रिएक्शन, लाइक कंफ्यूज्ड, फियर, फ्रस्ट्रेटेड, ओवर कॉन्फिडेंट, एम्बैरेसमेंट, और उनका फेस का हर इमोशन एक कॉमिक लेवल तक पुश हो जाता है। हंगामा, चुप चुप के, भूल भुलैया, ढोल, फिर हेरा फेरी, अमेजिंग। एंड इनमें एक इंटरेस्टिंग कॉम्पिटिशन ज़रूर होता है इतने सारे फनी एक्टर्स में एक फिल्म में, तो कौन सा सीन कौन स्टील करेगा। बिकॉज अगर जैसे मूवीज़ हैं, यू नो, ये ढोल या फिर हेरा फेरी, अब फिर हेरा फेरी की बात करेंगे तो परेश रावल जी भी हैं, अब अगर उसमें राजपाल यादव जी भी हैं, तो इनमें से एक कंपेटिटिव नेचर हो जाती है कि यू नो हु इज़ गोइंग टू परफॉर्म द बेस्ट comedy there. Anyhow, it's nice to have that competitive edge, but I really enjoyed watching him more so in Bhool Bhulaiya. Jab I'm so sorry Rajpal Yadav ji, lekin jab unko thappad padte hain Akshay Kumar ji se, main soch kar hi aisi aati hai. So it was really fun watching him in that. He was amazing, he was marvelous. I do not think any other actor would have justified that role as much as he did. Great fun. Let's listen to some of his songs from the movies and we'll come back and talk more.

0: रेडियो नायरा पर बजेगा सिर्फ बेस्ट हिट्स।
1: हे गाइस, वेलकम बैक। वेल वेलकम बैक तो ठीक है, लेकिन अब हो रहा है मेरा टाइम जाने का, बिकॉज गले में हो रही थोड़ी सी खराश एंड विक्स वेपर अब और विक्स से कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा। यू मे बी ऑलरेडी गेसिंग द वे आई एम टॉकिंग, आई हैव समथिंग इन माय माउथ, ऑब्वियसली दैट इज विक्स। आई होप दैट नेक्स्ट फ्राइडे तक मेरा थोड़ा गला ठीक हो जाए एंड देन आई कैन टॉक अ लिटिल बिट मोर, बट आई एम गोना लीव यू विद दिस नोट। डू यू गाइस थिंक दैट कैरेक्टर एक्टर्स जो आज की जनरेशन के हैं, आर दे वर्किंग एज हार्ड एंड देयर आउटपुट इज एज मच एज द जनरेशन दैट वी जस्ट टॉक्ड अबाउट, लाइक अनुपम खेर जी, किरण खेर जी एंड ऑल, परेश रावल जी। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक दैट विच जनरेशन्स कैरेक्टर एक्टर्स वर मोर फन, expected that they should be repeated, and we almost knew that if this particular actor is going to be in this movie though it's going to be fun or we should not watch it. Ek, you know, already predictions in your head that acha ye movie aayi hai isme kaun kaun hai, you know, a normal question other than hero and heroine, acha aur kaun kaun hai, aur kaun kaun hai, I'm not gonna watch. So what is your take on that? Would you like to watch the character actors from the Gen Z generation, or would you like rather go back into, if I'm gonna take the name, my husband is gonna laugh at me, but you know, the previous generations? So what would you prefer? Think about it and we'll come back and talk a little bit more next week, either with the same topic and different character actors, or I'll find some new topics. But for now, it's a wrap and I have selected some songs for you. I hope you guys enjoy and have a great, great, great weekend. Mera to long weekend hai, so I'm going to enjoy sleeping and have fun. I hope you do too. And thanks for being the lovely audience that you guys are. Have a blast and keep listening to Radio Naira. Sayonara.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुहावने मौसम में एक कप अदरक की चाय मिल जाए, और आज तो पता नहीं क्यों लेकिन मैगी खाने का मेरा मन बड़ा हो रहा है। मैगी मिल जाए एकदम ऐसी लाइक देसी मैगी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। एंजॉय करते हैं इस शाम का पहला गाना, बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल।

गाना था वाकई में काफी बेहतरीन, जिसने सेट कर रखी है इस इवनिंग की वाइब। तो अब वक्त हो चुका है कि हम जान लेते हैं कुछ लोकल खबरों के बारे में। तो रैली में डेटा सेंटर्स के काम पर लगी रोक। जी हाँ, रैली सिटी काउंसिल ने शहर में बड़े डेटा सेंटर्स के नए निर्माण पर अगले 6 महीने के लिए रोक लगा दी है। अधिकारियों का कहना है कि वे इस समय का उपयोग ये समझने के लिए करेंगे कि इन सेंटर में होने वाले शोर, कंपन और बिजली पानी की भारी खपत को कैसे कंट्रोल किया जाए। हालांकि कुछ लोकल लोग इस रोक को 32 महीनों तक बढ़ाने की मांग कर रहे थे। मतलब ऐसा है कि कह रहे हैं कि डेटा सेंटर्स की वजह से एनवायरनमेंट का भी नुकसान बहुत हो सकता है। तो एक बार ये उनकी जो भी प्रक्रिया है ये कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद डेफिनेटली थिंग्स विल गोइंग टू बी सॉर्टेड। आप सुन रहे रेडियो नायरा।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: लाओगे।

वेल एंजॉय किया आपने गाना, गाना था वाकई में काफी बेहतरीन। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पुनर्व नाइट्स एंड धर्म के गैरेज रोड पर भीषण आग। आज सुबह धर्म के गैरेज रोड के पास एक जंगली इलाके में भीषण आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की कम से कम 5 गाड़ियां पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आसमान में काफी धुआं देखा गया है और प्रशासन अभी इस बात की जांच कर रही है कि क्या किसी संपत्ति को कोई नुकसान हुआ है या कोई घायल हुआ है। आग लगना इट्स लाइक अ वेरी इमरजेंसी वाला थिंग एंड इस टाइम पर अगर सही मौके पर मदद मिल जाए तो चीजें जो है वो काबू में रहती है, वरना थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए हमेशा सावधान रहे, सतर्क रहे, आपके आजू बाजू हमेशा ध्यान रखे। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, एंजॉय करने जा रहे हैं अगला ही गाना। बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल।

ओ, क्या गाना था। मतलब इस गाने में वाकई में इस शाम की वाइस सेट कर रखी है। अब सुन रहे हैं रेडियो नायरा पट्टी पता नाइट्स एंड रैली और कैरी के बीच नई बस सेवा। वेस्टर्न बीआरटी रैली और कैरी शहर को आपस में जोड़ने के लिए वेस्टर्न बीआरटी दैट इज बस रैपिड ट्रांजिस्ट का आधिकारिक डिजाइन आज पेश किया गया है। अभी तो बस पेश किया गया है। ये नई रैपिड बस सेवा दोनों शहरों के डाउनटाउन के बीच कनेक्टिविटी और ट्रैफिक को बहुत आसान बना देगी। मतलब कोई भी देश की ट्रैफिक अगर अच्छे से चल रही है, लाइक शॉर्टकट्स क्रिएट किए जा रहे हैं, तो नथिंग इज लाइक दैट। आपने एंजॉय किया ये गाना और इससे भी बेहतरीन और ज़्यादा अच्छा गाना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। बने रहेगा रेडियो नायरा पर पक्का देसी पक्का लोकल। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का लोकल।